0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: To stay contact 07440016816 address 35 Lenton Boulevard Lenton Nottingham NG72ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
4: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

Better. The radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: It's
9: music never sounded better.
10: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए।
7: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Huzzah 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: टर्न इट अप रेडियो 5।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: It's commercial time.
5: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
8: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
9: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
11: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
14: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
13: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
14: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
13: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
15: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए। सामीन, खूबसूरत सी हमारी गपशप चल रही थी अखलाकियात का, वो टॉपिक जो आप सलातुस्सलाम की ज़ात हमेशा हमारे लिए लेकर आई हैं। 12 रबी अव्वल के हवाले से हमारी आज स्पेशल ट्रांसमिशन है सामीन ज़िबकार, और हमारे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हमारी पॉडकास्ट भी आप नशर होते हुए देखेंगे, कुछ हमारी रील्स हैं उनको भी देखेंगे। यानी आप सलातुस्सलाम की ज़ात का जो मंबा है, जो अखलाकियात का जो मंबा है, जो इन्हसार का मंबा है, जिस पे हम हमेशा इन्हसार करते हैं, आप सलातुस्सलाम की ज़ात सिर्फ हमारे लिए मशअले राह नहीं है, हमारे पास आप सलातुस्सलाम की ज़ात सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका नहीं है, बल्कि आखरत में द डे ऑफ जजमेंट आप सलातुस्सलाम की ज़ात ने हमारी शफात भी करनी है, आप सलातुस्सलाम की ज़ात ने हमें बख्शिश भी लेके देनी है, आप सलातुस्सलाम की ज़ात ने हमें अच्छे अखलाकियात के साथ साथ ये भी बताया है कि हमने अपने अजीज़ों का रब के साथ परफेक्टली प्रैक्टिकली सलूक कैसा करना है। ये सारी चीज़ें आप सलातुस्सलाम की ज़ात ने हमें बताई हैं, हमें सिखाई हैं। आप सलातुस्सलाम की ज़ात ने हमें हर चीज़ के बारे में बताया है, एक एक अमल करके दिखाया है। यानी 63 वर्ष की उम्र में एक इंसान जितनी तकालीफ बर्दाश्त कर सकता है, आप सलातुस्सलाम की ज़िंदगी में वो सारी तकालीफ आई हैं। आप यतीम पैदा हुए, कम उम्र में मस्कीन हो गए, आप सलातुस्सलाम की वालिदा मोहतरमा आपसे बिछड़ गई, किसी के हाथों में पले, बड़ी औरत की उम्र से शादी की, ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग की तरफ चीज़ आती है। फिर नबूवत का ऐलान किया, ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खाए, अपने छोटे छोटे बच्चों से बेइज्जती करवाई, लेकिन उसके बाद हिजरत भी की, उसके बाद फिर दुनिया को बता दिया कि कुर्बान जाएं कि इंसान कैसा होता है। नूरुल बशर यानी नूर वाला इंसान, ऐसी बशरियत जिसके पास नूर का बेतहाशा एक मंबा हो, वो कैसा होता है। सामी, अल्लाह ताला की ज़ात ने आप सलातुस्सलाम की ज़ात को हमारे पास भेज के इस चीज़ के लिए ज़्यादा और ख़ूबसूरत अंदाज में हमें इनाम और कराम के साथ नवाजा, और ये बताया कि ब्लेसिंग्स हमेशा ब्लेसिंग्स ही रहती हैं। सामी ने खूबसूरत सा कलाम है मेरे पास, सोचा कि वो ट्रैक भी आपके साथ प्ले किया जाए। सुबह यानी सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, कसीदा बुर्दा शरीफ की ये खूबसूरत से अशआर आपकी समाअतों की नज़र है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से। जैसे कि लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम? वेल, आप भी हमें बता सकते हैं इस तरह के ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से कलाम जो कि हम अपने इस प्रोग्राम की जीनत बना सकते हैं।

जी, तो बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि आज का दिन तमाम तरह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही खास और स्पेशल डे समझा जाता है, क्योंकि आज है रबीउल अव्वल की 12 तारीख, वो मुबारक दिन जिस दिन इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए थे। सो आज का दिन इस हवाले से कोई भी आम दिन नहीं है, बल्कि एक बहुत खूबसूरत और एक खास दिन है। आप सबको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। सो वेल लिसनर्स, जब इस दुनिया में बहुत सा अंधेरा छा चुका था और लोग इस कदर गुमराही में मुब्तला थे कि लोग सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते थे, लोगों का परसेप्शन इस कदर रॉन्ग था अबाउट फीमेल, अबाउट डॉटर्स, के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, तब एक ऐसी खूबसूरत हस्ती ने इस दुनिया में जन्म लिया जिन्होंने इस दुनिया में आके ना सिर्फ इस दुनिया का माइंडसेट बदला, बल्कि लोगों को गुमराही के अंधेरों में से निकाल कर उजाला की तरफ मुब्तला किया। और आज इस दुनिया में जितनी भी रोशनी है, जितनी भी फीमेल्स को उनके हकूक दिए जाते हैं, इसकी शुरुआत उस सेंचुरी से ही स्टार्ट हुई थी जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए थे। सो वेल लिसनर, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम में बहुत सारे टॉपिक्स को शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हमें आगे बढ़ना होगा, चलना होगा इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। सो आपने कहीं भी नहीं जाना डीवा डायलॉग का इसी तरह से हिस्सा बने रहना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून विद अस।

0: commercial time.
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
2: Congratulations. That was very quick.
3: I was very lucky. I used the local visa experts.
2: Who helped you with the application?
3: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
2: Where is AMH solicitors based?
3: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
2: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
3: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.
5: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: This is a public service announcement.
7: The station
8: that plays
9: foot tapping music.
10: Huzzah 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा.
12: वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग, वो भी सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप पे. सो वेल लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी हमारे चाहने वालों के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है. सो अगर आप भी उन्हीं लिसनर्स में शामिल हैं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, सो आप 01157100971 इस नंबर पे जाके हमें बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं. और कुछ इसी तरह से बन जाए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा. वेल लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आके तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराही से बाहर निकाला। उनकी ज़िंदगी में जो तमाम तर बुराइयां चल रही थी, जो अंधेरे थे, और जिस तरह से लेट सेंचुरी में समझा जाता था कि फीमेल इज़ अ बैड लक और लोग बेटियों को अच्छा नहीं समझे थे, और भी इस तरह के बहुत सारे दीगर मसाइल थे जिन पर आपने आके गिरफ्त डाली और इन तमाम तर मसाइल का सलूशन निकाला। सो आपने ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर दिखाया। सो अगर आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करते हैं तो ना सिर्फ आपको उसमें तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन मिलते हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरऑल भी अगर आप देखें तो हर तरह की इंफॉर्मेशन हर दौर के हवाले से आपको मिल जाती है।

So, जैसा कि आज हम अपने प्रोग्राम को कुछ इस तरह से तरतीब दे रहे हैं और आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि डेली बेसिस पर मैं आपसे बहुत ही फेमस हस्तियों के, फेमस फिलोसोफर्स के, ऑथर्स के कोट्स शेयर करती हूँ। तो आज क्यों ना मैं आपसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की हुई चंद खूबसूरत और कीमती बातें शेयर करती हूँ। हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छी तब्दीली लेकर रोनमा हो और आप जो काफ़ी हद तक नेगेटिविटी या फिर डिमोटिवेशन का है शिकार, उसमें भी आपको मदद मिले। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम सुनते हैं आज के दिन के हवाले से। सो वेल लिसनर्स, अभी अभी हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर हैं जिन्होंने हमें ये खूबसूरत सा कलाम सजेस्ट किया है या फिर कह सकते हैं रिकमेंड किया है। सो आइए मिलकर सुनते हैं उनका खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम और फिर आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा कलाम कैसा लगा और आप भी मुझसे शेयर करिएगा अपने पसंदीदा कलाम। सो फिलहाल के लिए तो ये कलाम सुनते हैं और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला अगेन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस कलाम के उस पार।

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम? अब जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सो आज का फर्स्ट कोट आप सभी से शेयर करती हूँ, और आज के कोट के हवाले से जो खास बात है वो ये है कि ये कोट ना सिर्फ किसी आम हस्ती ने नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और मुकद्दस हस्ती ने फरमाया है। सो इस हवाले से ये बहुत ही खास और स्पेशल है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। सो आजकल के दौर में लोग समझते हैं कि ऐसा इंसान जो कि बहुत अमीर हो, हाई सोसाइटी से बिलोंग करता हो, या फिर उसका सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग हो, वही एक अच्छा इंसान समझा जाता है, या फिर कोई अमीर वेल्दी किस्म का इंसान। लेकिन हमारे नबी के नज़दीक वही इंसान सबसे अच्छा खूबसूरत है जिसका अखलाक यानी कि द वे ऑफ टॉकिंग खूबसूरत हो। सो जब भी आप कभी भी किसी से बात करते हैं, या फिर अक्सर औकात डिफरेंट तरह की सिचुएशंस होती हैं, समटाइम्स आपको डिबेट करनी पड़ती है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में मैटर ये करता है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। सो अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग खूबसूरत होगा, मीठा होगा, सादा होगा, तो हो सकता है कि आपकी बात दूसरे इंसान के दिल में घर कर ले और दूसरा इंसान आपकी बात को जल्दी समझ सके। सो वेल लिसनर्स, ये था आज का हमारा फर्स्ट खूबसूरत सा कोट। आई होप आपको ये खूबसूरत सा कोट बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर इस हवाले से आपने भी कुछ डिस्कस करना है तो आप हमसे कर सकते हैं। अगेन आपको बताती चलती हूँ, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो आप इस नंबर के थ्रू हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। आपके तमाम तरह मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी बनाया जाएगा। सो लिसनर्स एंड माई लवली डिवर्स, मैं सोच रही थी जैसे कि आज इतना खूबसूरत मुबारक दिन है, तो आज के दिन के हवाले से हम खुद से एक अहद करते हैं कि किस तरह से हम अपनी ये जो गुमराही में मुबतला जिंदगी है, आई मीन टू से जैसे कि डेली बेसिस पर हम बहुत ज़्यादा अपने दुनियावी ज़िंदगी को तवज्जा देते हैं, अपना मेन फोकस इस पर रखते हैं कि किस तरह से हम कामयाब हों, सक्सेसफुल हों, हम

हर वो चीज़ अचीव कर ले जो कि इस दुनिया में हमारा गोल है। सो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हम सही गलत का फ़र्क भूल जाते हैं और हम ये भी भूल जाते हैं कि किस तरह से हमारा इस दुनिया में आने का असल मकसद क्या था और क्या हम अपने मकसद की जानिब ठीक तरीके से बढ़ रहे हैं या नहीं। सो आज हम खुद से एक वादा करते हैं कि आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, चाहे कोई बड़ी बात हो या हो कोई भी छोटी बात। डेली बेसिस पर समटाइम्स अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आप झूठ बोलने से नाकाम होंगे, आपको वो चीज़ अचीव नहीं होगी, तब भी आपने पूरी कोशिश यही करनी है कि आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ हर तरह की बुराई की जड़ है। अगर आप झूठ बोलना छोड़ देंगे तभी आप तमाम तरह की बुरी बुराइयों से बच सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन के हवाले से जो सेकंड अहद हमने यानी कि मैंने और आपने मिलकर करना है वो ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के आसपास, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी में एक नज़र दोहराएं, इस चीज़ का मुतालिया करें कि क्या हमारी इर्द गिर्द, हमारे गिर्द नवा में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि हो नीडी, उसको मदद की ज़रूरत हो लेकिन सम हाउ वो नहीं कह रहा हो अपनी खुद मुख्तारी की वजह से या फिर किसी पर बोझ ना बनने की वजह से। सो आज के दिन हमने इस चीज़ का अहद करना है कि हम अपने आसपास की कम्युनिटी को ऑब्जर्व करेंगे और ऐसे लोगों को ढूंढ के उनकी मदद करेंगे जो कि वाकई ज़रूरतमंद हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत हो। अब यहाँ मदद दो तरह की आ जाती है। मदद इज़ नॉट लाइक कि आप किसी की फाइनेंशली ही मदद करिए, आप किसी को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, किसी को इमोशनली हेल्प आउट कर सकते हैं और भी बहुत सी तरह की मदद होती है जो कि आप अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग दूसरों की कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन के हवाले से जो हमारा तीसरा अहद है वो ये है कि हम अपने बड़ों से इज्जत से पेश आएंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम छोटों से शफकत करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटों से प्यार से शफकत से पेश आते थे। आई नो बच्चे थोड़े अनोइंग होते हैं, समटाइम्स तंग करते हैं तो बंदा इरीटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने इस इरीटेशन को खुद पर हावी नहीं होने देना और कोशिश करनी है कि आप उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार से पेशाएं और खास तौर पर नरमी से। सो वेल लिसनर्स, ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि कहने को तो बहुत छोटी लगती हैं लेकिन अगर अमली ज़िंदगी में देखा जाए तो ये काफ़ी असरअंदाज होती हैं। सो ये कुछ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, जिनको अमल करके ना सिर्फ हम इस दुनिया में सक्सेसफुल बन सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, बल्कि उस आने वाली अगली दुनिया में भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। लिसनर्स, इस खूबसूरत से प्यारे से गुफ्तगू के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक अदद खूबसूरत से प्यारे से कलाम का। सो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा कलाम और कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर स्टार्ट करते हैं आज का अगला सेगमेंट।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग और मैं हूँ आपकी होस्ट जैनब फातिमा। सो वेल लिसनर्स, अब टीवा डायलॉग का ये सफर मजीद आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। सो आज के दिन के हवाले से आज का सेकेंड इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल कोट मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमारा आज का सेकंड मोटिवेशनल कोट कुछ यूं है कि इस दुनिया में सिर्फ वही शख्स कामयाब हो सकता है जो कि अपनी मेहनत पर, अपने दम पर आगे बढ़ता है, ना कि कभी किसी से हसद करता है, ना ही जलता है। सो हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि डेली बेसिस पर जब हम उन्हें अपनी कामयाबी या फिर अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं तो वो ऊपर से तो हमसे यही कहते हैं कि ओ वाओ ग्रेट, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो इनसिक्योर हो रहे होते हैं, आपसे जेलस फील कर रहे होते हैं। तो साथ ही साथ ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो आपको बहुत डीग्रेड फील करवाते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डू समथिंग न्यू तो वो आपसे कहेंगे कि ये काम तो आज तक कभी किसी ने किया नहीं, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, इसमें कोई स्कोप नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें। लेकिन उनका असल मकसद बेसिकली ये होता है कि वो आपसे इनसिक्योर हो रहे होते हैं, वो आपसे कंपटीशन कर रहे होते हैं और वो ऐसा समझ रहे होते हैं कि आप उनसे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बेहतर हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि जो लोग दूसरों से हसद करते हैं या हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की है, वो बस ये देखते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत जल्दी हासिल हो गई है और उन्होंने ये चीज़ जल्दी अचीव नहीं की। इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, सक्सेसफुल हों, आप वो अचीव कर सके जो आपको चाहिए, इसके लिए ना सिर्फ आपको मेहनत करनी होगी बल्कि आपको अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना होगा। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आप हमेशा दूसरों में अच्छाई तलाश करेंगे, दूसरों को अच्छे नज़रिए से देखेंगे, तभी आप एक बावकार और कामयाब इंसान बन सकते हैं। जैसे कि हम ये बात कर ही रहे हैं हसद की और कंपैरिजन की, तो जैसा कि है 12 रबीउल अव्वल, तो आज के दिन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मैं आपको एक शॉर्ट सी मुख्तसर सी एग्जांपल देती हूँ। बेसिकली जब आप पर नबूवत नाजिल हुई तो बहुत सारे लोग उस वक्त आपके भी अगेंस्ट हो चुके थे, ना सिर्फ ऐसे लोग जो कि आपके करीबी साथी थे, आपके रिश्तेदार थे, उन्होंने भी आपको झुठलाया था। अगर आपको लगे कि आप जिस रस्ते पे चल रहे हो वो रास्ता ठीक है, तो कभी भी आसपास की कम्युनिटी, आसपास के लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी। और अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है या ऐसा कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो आपने उनकी बातों में ध्यान नहीं देना, बल्कि हमेशा अपने मन की आवाज़ को सुनना है।

लिसनर्स, ये था हमारा आज का सेकंड मोटिवेशनल कोट. वेल, फिलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो हम इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं. आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, सो स्टे ट्यून्ड विद अस.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। जी तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे सैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग। जैसा कि लिसनर्स, मुझे और आपको साथ में हो चुका है एक घंटा मुकम्मल। सो जिस एक घंटा हमने एक बात की आज के दिन के हवाले से, जैसे कि आज है 12 रबीउल अव्वल और तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल दिन है।

लिसनर्स, जब मैं अभी तो नहीं लेकिन पहले जब मैं पाकिस्तान में रहा करती थी तो हम वहाँ पर इस दिन को बहुत अच्छे से एहतमाम से सेलिब्रेट करते थे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से तमाम तरह मुस्लिम कम्युनिटी ईद को सेलिब्रेट करती है। इस दिन भी सब लोग क्या करते हैं, नहा धोकर अच्छे साफ लिबास पहनते हैं और फिर उसके अलावा फैमिली गेट टुगेदर होती है, नातिया कलाम पढ़ते हैं और इसी तरह से इस खूबसूरत से दिन को स्पेंड करते हैं। लेकिन अब चूँकि जैसे कि अब हम यहाँ हैं सो अब तो उस तरह से फ्री टाइम भी नहीं मिलता और जैसे कि काम भी करना पड़ता है, सो इसीलिए आज का ये खूबसूरत सा दिन मैं आप सभी के साथ गुजार रही हूँ। जैसा कि लिसनर्स मैंने आप सभी से कहा था कि कमर्शियल ब्रेक के उस पार हम शुरू करेंगे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट। सो जैसे कि है हमारे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट ब्यूटी एंड मेकअप के हवाले से। सो आज भी मैं आप सभी के लिए यानी कि हमारे डिवाइस के लिए जो कि घर पर रहती हैं या ऐसे डिवाइस जो कि घर से बाहर डेली बेस पर जाती हैं, बेतहा काम काज करती हैं और डेली बेसिस पर उन्हें बहुत सारा सन एक्सपोजर बर्दाश्त करना पड़ता है, सो आई फील लाइक कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़रूरत है नरिशमेंट की, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स की जो कि आपकी स्किन को बना देंगी खूबसूरत, प्यारा और ग्लोइंग। साथ ही साथ जो लास्टली मैंने आपसे कुछ स्किन केयर टिप्स शेयर की थी तो उसका फीडबैक भी मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उन तमाम तरह रेमेडीज़ को अपने फेस पर अप्लाई किया और आपको भी उनके रिजल्ट्स मेरी तरह अच्छे लगे। सो डियर लिसनर्स, अगर इस हवाले से आपकी कोई स्पेशल क्यूरी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से आपको कोई अच्छी सी प्यारी सी ब्यूटी टिप दूँ, सो यू कैन आस्क मी 0115710097171 है मेरा और आपका रابطے का नंबर, सो आप बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकते हैं एंड आई मेक श्योर कि उन तमाम तरह चीज़ों को हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। सो आज की जो हमारी फर्स्ट रेमेडी है ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा टैन हो चुकी है। एक होता है नॉर्मल किस्म की टैनिंग और फिर आती है एक्सट्रीम लेवल की टैनिंग, यानी कि ऐसी टैनिंग जिसमें आपके हाथ पे या पाँव पे अक्सर औकात निशान बन जाते हैं और इस तरह से भी होता है कि आपने जैसे ड्रेसिंग की हुई होती है तो जैसे कि आपके बाजू रिवील हो रहे हैं तो उनका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है बाकी स्किन से, सो इट्स लाइक अ डिस्कलरेशन। सो हमारी ये जो आज की रेमेडी है ये टोटली ऑर्गेनिक है और ये फाइट करेगी डिस्कलरेशन से और आपकी स्किन को इवन टोन बनाएगी और खूबसूरत प्यारा तो बनाएगी ही। सो लिसनर्स, आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। इस रेमेडी के लिए आपको कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली 3 से 4 अदद चीज़ें चाहिए और वो भी ऐसे जो कि आपके घर पर आपके किचन में है मौजूद। सबसे पहले आपने ले लेना है बेसन 1 से 2 चम्मच, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में ये मास्क रेडी कर रहे हैं। अच्छा, बेसन एक बहुत ही अच्छा पार्टिकल है, बेसिकली एक अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन की तमाम तरह डार्क स्पॉट से फाइट करता है बल्कि अन ईवन टोन स्किन को भी खूबसूरत बनाता है, साथ ही साथ अगर बहुत सारी टैनिंग हो चुकी है उसे ख़त्म करता है, डलनेस को ख़त्म करता है और आपको एक खूबसूरत इंस्टेंट ग्लो देता है। सो अगर आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी दूर दराज एरिया में जाते हैं या अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो कि आपके पास कोई अच्छा फेस वॉश नहीं है, सो आप बेसन को भी जस्ट पानी में गीला करके अगर अपने फेस पर रब कर लें और 2 से 3 मिनट में रिमूव कर दें तो आपको बिल्कुल ऐसे ही क्लीनिनेस मिलेगी जिस तरह से आप किसी अच्छे महंगे क्लेंजर को यूज़ करते हैं तब आपको फील होता है। वेल लिसनर्स, ये तो होगी एक साइड टिप, अब जरा मेन रेमेडी की जाने बढ़ते हैं। सो आपने ले लेना है 1 से 2 चम्मच बेसन, साथ ही साथ आपने इसमें शामिल करना है 1 से 2 चम्मच दही। अच्छा, योगर्ट भी इट्सेल्फ बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फाइट करता है तमाम तरह के डार्क स्पॉट्स से और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प आउट करता है। साथ ही साथ आपने ले लेना है कॉफ़ी, कॉफ़ी भी इट्सेल्फ इट्स अ रियली गुड इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन। अब आपने शामिल करना है इसमें पिंच ऑफ हल्दी। हल्दी को आपने बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना है क्योंकि मैंने सुना है कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों की स्किन होती है सेंसिटिव, सो अगर आप हल्दी का इनटेक ज़्यादा करते हैं तो मे बी इट कॉज इरिटेशन ऑन योर स्किन, सो आपने हल्दी को बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करना है।
सो ये थे वो बेसिक से चार इंग्रेडिएंट्स, बेसन, दही, हल्दी, साथ ही साथ कॉफ़ी। अब आपने कर लेना है इन्हें अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपको मिक्स करने पर ऐसा लगे कि आपका ये जो बैटर है ये काफ़ी हद तक थिक है, तो आपने क्या करना है, इसी पेस्ट के अंदर एक से दो चम्मच मिल्क ऐड कर लेना है। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, ये उस सूरत में जब आपको लगे कि आपका बैटर बहुत थिक है या फिर आपका पेस्ट इस कदर थिक है कि आप उसको इजीली अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर रनी कंसिस्टेंसी है सो आप उसको उसी तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बस आपने इस फेस मास्क को अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है, फेस पर, नेक पर, इवन हाथों पर, बाजू पर और जितने भी आपकी एरियाज हैं जहां आपको टैनिंग हो चुकी है वहां वहां आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट आपने अच्छी तरह से इसे सूखने देना है। और जैसे ही आपका ये बैटर ड्राई हो जाए तो आपने हल्के हाथों मसाज करते करते इससे रिमूव करना है। इससे ये होगा कि आपके फेस पे जितनी भी डर्ट होगी, पोल्यूशन होगी, उसकी जो एक लेयर बन चुकी होती है वो भी आराम से रिमूव हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी अगर फेस पर फेशियल हेयर्स हैं तो वो भी काफ़ी हद तक इस मास्क के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। आई नो माई लवली डिवर्स, डेली बेसिस पर मंडे से लेके फ्राइडे तक आप बहुत बिजी होती हैं, सो टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी स्किन केयर करें या फिर महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाएं। सो ये एक ऐसी रेमेडी है जिसे आप वीकेंड्स पर भी कर सकती हैं। सो आपने इसे वीक में 2 से 3 मरतबा अप्लाई करना है। वेल, अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप इसे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तीनों दिन अप्लाई करें, क्योंकि वीकेंड्स पे अक्सर हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है अपने लिए। सो जहां हम अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को अपना इतना कीमती वक्त देते हैं, वहीं हमें थोड़ा सा वक्त अपने खुद के लिए भी निकाल लेना चाहिए। सो आपने इसे इसी तरह से अप्लाई करना है। सो द लिसनर्स, ये थी हमारी आज की फर्स्ट ब्यूटी रेमेडी। आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। सो इस हवाले से है, अगर आपकी कोई भी क्यूरी सो आप हमसे पूछ सकते हैं। वेल, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये मास्क कैसा लगा। और भी बहुत सारी रेमेडीज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले सोच रही हूँ कि क्यों ना प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम शामिल किया जाए। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये बड़ा खूबसूरत सा कलाम, और कलाम के उस पार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे।

0: तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कलाम सनम मारवी की आवाज में? वापस से कंटिन्यू करते हैं अपने उसी सेगमेंट को। सो जैसा कि मैंने आपसे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की जो कि आपकी टैनिंग को रिमूव कर देगी, अब जरा आपसे शेयर करती हूँ एक ऐसी खूबसूरत सी यानी कि अच्छी सी रेमेडी जो कि आपके बालों को काफ़ी हद तक थिक और शाइनी और स्मूथ बना देंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हेयर फॉल का बहुत ही ज़्यादा स्वेयर इशू रहता है, साथ ही साथ मैंने बहुत सारे लोगों में ये भी एक प्रॉब्लम नोट की है कि बहुत सारे लोगों में हेडलाइन बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका फोरहेड बहुत बड़ा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा होता है, तभी आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स शेयर करनी पड़ती हैं। आई मीन टू से तभी आपको ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो इन तमाम तरह प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन। सो ये आपके हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को भी मजबूत करेगा और आपके बाल काफ़ी हद तक स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। सो इस रेमेडी के लिए आपको अगेन कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको कुछ भी अनऑर्गेनिक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम टोटली ऑर्गेनिक चीज़ों से ही ये मास्क रेडी करेंगे। सो ये मास्क आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाएगा और साथ ही साथ एक केराटिन इफेक्ट भी क्रिएट करेगा। सो आपने ले लेना है एक अदद अंडा, ठीक है। अब मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर करने जा रही हूँ। सो आपने क्या करना है, अंडे की सफ़ेदी यूज़ करनी है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको एक इरिटेटिंग स्मेल सी नहीं फील होती। सो आपने ले लेने हैं 1 से 2 अदद एग, साथ ही साथ आपने उसमें शामिल करना है योगर्ट। अच्छा, योगर्ट क्या करता है, बालों को बहुत ही सिल्की शाइनी बनाने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट करता है। साथ ही साथ आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो ये बेसिक से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने सबसे पहले ले लिया अंडा, अंडे के साथ ही दही, दही में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। अच्छा, कैस्टर ऑयल क्या करता है कि बालों को अंदर से नरिश करता है। सो अगर आपके ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर आपके बाल जड़ से ही काफ़ी कमज़ोर हैं, तो ये क्या करेगा, उसे मजबूत बनाने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। सो आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खास तौर पर आपने ये मास्क तभी रेडी करना है जब आपने इसे बालों में अप्लाई करना हो, ना ही उससे थोड़ा देर पहले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अदरवाइज इससे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग फ्रेग्रेंस क्रिएट हो सकती है जो आपको काफ़ी इरिटेट कर सकती है। सो अब आपने इस मास्क को रेडी कर लेना है और जब कभी आप शावर लेने लगें, सो आपने बस शावर से 1 घंटा पहले इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है, बालों की रूट्स में, टिप्स पे और इवन के इस तरह से अपने बालों में अप्लाई करना है कि आपके बाल तमाम तर हर तरह के बालों में ये लग जाए, ठीक है। सो आपने इसे अपने बालों में लगा लेना है, उसके बाद आपने मैक्सिमम वेट करना है 1 घंटे का, और 1 घंटे के बाद आपने शावर ले लेना है और साथ ही ये मास्क रिमूव हो जाएगा। सो जब आप इस मास्क को अप्लाई करेंगे, सो आप फील करेंगे कि फर्स्ट 2 एप्लीकेशंस में ही आपको काफ़ी हद तक वाज़ह रिजल्ट नज़र आएंगे। आपके बाल जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा फ्रिजी या फिर स्प्लिट एंड्स दिखते हैं, वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, बालों में एक शाइन होगी, साथ ही साथ आपको ऐसा फील होगा कि आपके बाल एक्स्ट्रा सिल्की लग रहे हैं। सो लिसनर्स, ये थी मेरी आज की 2nd ब्यूटी टिप। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। सो लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको ये हेयर मास्क कैसा लगा। वेल, जिस तरह से आजकल का ये मौसम चल रहा है, सो जब कभी भी ऐसा होता है कि मौसम थोड़ा अप एंड डाउन रहता है, यानी कि गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती लेकिन सर्दी भी नहीं होती, सो इट्स काइंड ऑफ अ मिडल तो जब भी इस तरह का मौसम होता है तो मोस्टली लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके बाल काफ़ी हद तक डैमेज हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं और स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं आपको बाकियों की नहीं तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि आजकल मौसम के हवाले से मेरे बाल काफ़ी हद तक फ्रीजी हो चुके हैं और जब भी मैं कोई भी स्टाइलिंग करती हूँ या फिर किसी भी किस्म का हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो वो काफ़ी मैसी लगता है और बाल काफ़ी फ्रीजी फ्रीजी लगते हैं। सो इसीलिए मैंने ये रेमेडी ट्राई की और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे अपने लिसनर्स के साथ भी शेयर किया जाए। सो आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लड़की हैं या लड़का, आपको सभी को अपने बालों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि बाल इंसान की पर्सनैलिटी में बहुत अहमियत रखते हैं। सो अगर आपके बाल खूबसूरत सिल्की शाइनी दिखेंगे तभी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी और शख्सियत में एक निखार उजागर होगा। सो जी माई लवली डिवाइस, ये तो थी मेरे पास कुछ अच्छी सी प्यारी सी ब्यूटी टिप्स। अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी अच्छी अच्छी सी टिप्स जो टोटली ऑर्गेनिक हो या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज जो आपने खुद ट्राई की हो और आपको काफ़ी इफेक्टिव लगी हो, सो डू लेट मी नो ताकि मैं उसे बाकी लिसनर्स के साथ भी शेयर करूँ और आपकी उस रेमेडी से बाकी तमाम तर लोग भी इस्तेफादा हासिल करें। जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे कि आज है 12 रबीउल अव्वल, तो हमने अपना अहद करना है, पूरी कोशिश करनी है कि हम दूसरों की मदद करेंगे और दूसरों के काम आएंगे। सो ये भी एक किस्म की मदद है कि आप किसी को एक अच्छा मशवरा दे दें, अच्छी एडवाइस दे दें या फिर किसी को एक अच्छा ओपिनियन दे दें, क्योंकि आजकल के इस दौर में मोस्टली बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सुनते हैं, समझते हैं और आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। वरना लोग इस कदर हड़बड़ी में और तेज़ी में होते हैं कि बस हर किसी को अपने काम से मतलब होता है, बस यही सोच रहे होते हैं कि अपना काम हो जाए, किसी तरह से टारगेट अचीव हो जाए या फिर अपना टास्क पूरा कर ले और अपनी ज़िंदगी में दवा दवा रहे। सो इस कदर मसरूफ़ दौर में अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौजूद है जो आपको एक अच्छी पीस ऑफ एडवाइस दे दे या फिर आपकी प्रॉब्लम को सुने और उसका सलूशन निकाले, सो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग और ये भी एक तरह की हेल्प ही होती है। सो द लिसनर्स, बाकी आज के दिन के हवाले से जो भी हमने अहद की हैं आपने उनको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है और कोशिश करना है कि आपने उन्हें ना सिर्फ आज नहीं कि आज 12 रबीउल अव्वल है सो हम खुद को एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाएं, बल्कि ओवरऑल नॉर्मल दिनों में भी अपनी ओवरऑल ज़िंदगी में भी उन तमाम चीज़ों को अप्लाई करें। सो द लिसनर्स, इस खूबसूरत सी प्यारी सी बात के साथ ही इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। वेल लिसनर्स, जब इस तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हो रही हों तो दिल तो नहीं करता कि कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ा जाए, लेकिन चूंकि हमें जाना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होते हैं, सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है और मैं इस कमर्शियल ब्रेक में आपके तमाम तर मैसेजेस को रीड कर लूँगी और फिर ब्रेक के बाद वही तमाम तर कलाम्स प्रोग्राम में शामिल करूँगी। सो जी लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून विद अस।
1: इट्स कमर्शियल टाइम। आर यू हाईली ऑर्गेनाइज्ड विद एक्सलेंट लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news.
2: My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
2: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
2: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH Solicitors based?
2: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
2: Sure, their number is 0115 671 3677, and they are in Pure Gym building. So, parking is available, and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद दीवा डायलॉग में। जी तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप पे। सो डियर लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी से शेयर कर देती हूँ हमारा और आपका है राब्ते का नंबर 0115710971। ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि है एक जरिया आपको और मुझे साथ में जोड़ने का। सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं वो सभी बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी से, या आप चाहते हैं कि आपको मिले कोई भी अच्छी सी प्यारी सी पीस ऑफ एडवाइस, तो आप इस समय के थ्रू हमसे वो शेयर कर सकते हैं एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह की क्यूरियस को दूर करें। साथ ही साथ आप सभी को बताते चलती हूँ कि किस तरह से आप हमारी इन खूबसूरत सी आवाज़ों को ट्यून कर सकते हैं। सो www.radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप कर सकते हैं हमें ट्यून बल्कि बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो आप जान सकते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM पर अब कौन सा नया इवेंट है आने वाला, और साथ ही साथ ये भी कि आपका पसंदीदा आरजे कौन सा दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला। सो आप अपने डेली बेसिस के कामों को उस हिसाब से तरतीब दें ताकि आप हमारी खूबसूरत सी आवाज़ों को भी साथ साथ ट्यून करते रहें। अच्छा, तो जो लोग ड्राइव कर रहे हैं या फिर रास्ते में या फिर ड्राइव करते करते चाहते हैं हमें ट्यून करना, या आप चाहते हैं कि आपका ये सफ़र और डेस्टिनेशन बन जाए खूबसूरत, सो उसके लिए आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि है आज एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा मुकद्दस सा दिन, क्योंकि आज का दिन तमाम मुस्लिम कम्युनिटी में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मनाया जाता है, क्योंकि है आज 12 रबीउल अव्वल, यानी आज के दिन वो खूबसूरत अजीम पाक हस्ती इस दुनिया में तशरीफ लाई थी, जिनके आने से इस दुनिया का ना सिर्फ नक्शा ही बदल गया बल्कि इस दुनिया को सही और गलत में फ़र्क करना भी आ गया। सो वेल लिसनर, जहाँ इतना खूबसूरत इतना प्यारा सा दिन हो, वहीं खूबसूरत से प्यारे से पकवान ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो आज के द स्पाइस किचन में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज जो कि आप अपने घर पर बना सकते हैं किसी खास दिन पर, किसी खास ओकेजन पर। और जैसे कि आज है 12 रबीउल अव्वल, तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन के अलावा कोई खास ओकेजन तो हो नहीं सकता जहाँ आप अच्छी अच्छी सी रेसिपीज ट्राई करें। सो आपसे शेयर करती हूँ इन ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ को, लेकिन उससे पहले सोच रही हूँ कि प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम शामिल कर लिया जाए, जो कि हमारी एक लिसनर की फरमाइश है। सो ये खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम सुनते हैं और कलाम के उस पार हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं।

तो लिसनर्स आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइस किचन में एक ऐसी रेसिपी जो कि तमाम आई थिंक एशियन कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है प्लस पॉपुलर है। एंड आई एम श्योर आपने काफ़ी मरतबा इसको ट्राई किया होगा, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट मुनफरद और अलग अंदाज में, क्योंकि चावल तो आई थिंक सो तमाम तर एशियन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं और जिस तरह के आज है पालरेबल लेवल, सो इस हवाले से जितनी भी फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं तो मोस्टली देखने को यही मिलता है कि एक ना एक रेसिपी ऐसी ज़रूर होती है जो चावलों से जुड़ी होती है। सो इसीलिए आज हम बनाएंगे द ऑथेंटिक पाकिस्तानी चिकन पुलाव। वेल आई नो आपने इसको काफ़ी मरतबा ट्राई किया होगा, लेकिन आपने इसे अपने अंदाज में बनाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे इसको थोड़ा सा मुनफरद और अलग स्टाइल में। सो सबसे पहले मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए इस रेसिपी के लिए। सो हमें चाहिए बासमती चावल 500 ग्राम्स, साथ ही साथ चिकन 750 ग्राम्स। बात करें अगर हम कुकिंग ऑयल या फिर बासमती घी की तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। 1 and 2 कप प्याज हमने ले लेना है, दो बारीक बड़े साइज के, साथ ही साथ योगर्ट 1.5 कप,

गर्म पानी 4 कप। अब जरा बात करते हैं मसाला जात की। सो इस रेसिपी में हम शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, टमाटर 1 छोटा बिल्कुल बारीक कटा हुआ, नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका, लेकिन यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, साथ ही साथ ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, और अब हम बात करते हैं साबित गरम मसाले की। तो साबित ज़ीरा 1 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, दालचीनी 2 बड़े टुकड़े, लौंग 5 से 6 अदद, और साबित काली मिर्च 8 से 10 अदद, हरी इलायची 4 अदद और बड़ी इलायची 1 अदद। सो वेल, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी आज की इस रेसिपी को 4 चांद लगाएंगे, क्योंकि बिना स्पाइसेस के और बिना मसाला जात के कभी भी कोई खाना डिलिशियस नहीं बन सकता। सो आज के दिन के हवाले से ये एक परफेक्ट रेसिपी है, और जैसे कि आज फैमिली गेट टुगेदर्स भी होती हैं बहुत सारे लोगों के घरों में, जहाँ सब फैमिली आपस में मिल बैठ के साथ में दुआ करते हैं और दुआ खैर के बाद खाना खाते हैं। सो आप आज के लिए इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स, अब ज़रा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की जाने बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, क्योंकि कोशिश यही करिएगा कि आप थोड़े खुले साइज़ का बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर औकात जब हम छोटे साइज़ का बर्तन यूज़ करते हैं तो हम चावलों को अच्छी तरह से हिला नहीं सकते और थोड़ा मुश्किल होती है। सो आई थिंक सो कि आपको बर्तन का साइज़ थोड़ा खुला रखना चाहिए। सो उसमें अब हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल या फिर बासमती घी, जो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके पास क्या अवेलेबल है। सो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाले और 30 सेकंड्स तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब कटे हुए प्याज डालेंगे और उन्हें तब तक फ्राई करेंगे कि जब तक वो बिल्कुल डीप गोल्डन ब्राउन के ना हो जाएं। अब बारी आती है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन शामिल करने की। सो हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे, साथ ही साथ फ्लेम को कर देंगे हाई, 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे जब तक चिकन का रंग बदल ना जाए। सो अब इसमें बारी आती है टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक शामिल करने की। सो इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल नरम ना हो जाएं। सो जैसे ही अब आपको लगे कि आपके टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो अब फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का और इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें दही शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढककर 8 से लेकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। सो अब बारी आती है आंच को दोबारा से तेज कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 4 कप गर्म पानी। पानी में जब तक उबाल आता है तब तक हम चावलों को अच्छी तरह से धो लेंगे। तो अब हम इन चावलों को अपनी बेसकी में शामिल कर देंगे, साथ ही साथ हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसे हिलाएंगे ताकि बिल्कुल भी चावल टूटे नहीं।

सो जैसे ही आपको लगे कि आपका पानी अब तकरीबन सूख चुका है, तो अब बारी आती है कि और इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। सो अब बारी आ चुकी है कि अब हम इसे दम पर लगा दें। सो अच्छी तरह से ऊपर से ढक कर हम इसे दम पर लगा देंगे और 12 से लेकर 15 मिनट तक दम पर रहने देंगे। इस बीच हमने करना कुछ यूं है कि फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो, क्योंकि अगर फ्लेम थोड़ा सा भी हाई होगा तो इस चीज़ का खतरा है कि हमारे चावल जल सकते हैं। सो जी 15 से 16 मिनट्स के बाद आप दमा खोलें और आपकी मज़ेदार से शानदार सा ये चिकन पुलाव हो जाएगा तैयार। लिसनर्स, ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की मज़ेदार सी रेसिपीज, जैसे कि है आज 12 रबीउल अव्वल। सो इस हवाले से काफ़ी नजर न्याज का सिलसिला भी होता है, सो उसके लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट और बैलेंस्ड रेसिपी है। सो लाजमी ट्राई कीजिएगा इसे आज ही। मैं तो यही कहती हूँ कि आप आज इसे लंच में बना लें और तमाम तर फैमिली के साथ मिलकर इसे खाएं, या फिर आप डिनर में भी बना सकते हैं। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फ्यूजन, सो आपको जायका और टेस्ट काफ़ी हद तक मुनफरिद लगेगा। सो जी अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमें 01157100971 इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं। साथ ही साथ इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। सो जी इसी के साथ ही हमारा टीवा डायलॉग का ये जो सफ़र हमने शुरू किया था अपने इख्तिताम को पहुँचता है। प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा आपका दिन, आपकी सुबह और ये खूबसूरत सी जिंदगी अभी बाकी है और बहुत सारे एडवेंचर्स। सो इस दिन को पूरी कोशिश करिएगा कि आप यूटिलाइज करें अच्छे कामों में और तमाम तरह की नेगेटिविटी से, बुराई से और डीमोटिवेशन से खुद को ज़रा साइड पे रखें। और जैसा कि है आज एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मुकद्दस दिन 12 रबीउल अव्वल, सो आज के दिन के हवाले से भी जो हमने, मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर अहद किया है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, छोटों से शफकत से पेश आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने गिर्दोनवा में अगर कोई शख्स ऐसा मौजूद है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए।

सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ आई हो तो वो भी मुझसे शेयर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें प्रोग्राम में शामिल करनी चाहिए थी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। सो जी अपनी होस्ट आर से ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी गपशप के साथ। सो फिलहाल के लिए मैं एक खूबसूरत सा जाते जाते कलाम आप सबके लिए प्ले करती चलती हूँ ताकि आप इस प्यारे से कलाम को सुने और मुझे अलविदा करें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: अहम पहलू अगर देखे जाएँ तो रबीउल अव्वल इस्लामी तारीख का एक अहम महीना है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक इसी महीने से जो है वो हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद, नमाज, सदाकत, अमानत और हुस्न सलूक की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कमज़ोरों, यतीमों और मोहताजों का ख्याल भी रखते थे। अभी भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से कोशिश करते होंगे कि हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करें, लेकिन उनकी तरह कोई बन नहीं पाता। और नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन उसमें कोई गलती कोताही ना हो मुझसे। सुबह बातों का सिलसिला आपके साथ जारी करेंगे, प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन अभी जो है वो प्रोग्राम में एक छोटा सा कलाम शामिल कर देते हैं। अव्वल प्रोग्राम का आगाज़ मैं हमेशा की तरह करती हूँ कलाम के साथ। सवल, जिन्हें लोगों ने आज अरबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। आज का दिन बड़े खूबसूरत दिन है, तो घरों में जो है ना वो खाने पीने की तैयारियां कर ही लें आप, क्योंकि आना जाना तो खैर लगा ही रहेगा मेहमानों का भी, और न्याज जो है ना वो स्पेशली आपने देनी है। सवल, अभी प्रोग्राम में आवाज़ शामिल करेंगे सना मालवी की। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खूबसूरत से कलाम के साथ, फिर इसके उस पार आपसे गपशप का सिलसिला की जारी करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जितनी बातों का इल्म मुझे है मैं उनको आपके साथ शेयर करती रहूं, लेकिन आपने भी अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाना है। ट्यून करके रखना है फजल 97.1 एफएम को एंड डैप को।
1: ते साडा रोना वी ना।
0: मिलते हैं इस खूबसूरत से कलाम के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को। एक खूबसूरत सा कलाम शाह ने किया था आपके दरमियान सना मालवी की आवाज में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। सवाल रबी अव्वल के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ रैंडम मैसेज

सवाल इसी के साथ साथ अभी प्रोग्राम में एक और कलाम की मेरे पास फरमाइश आन पहुंची है, तो आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं प्रोग्राम को उसमें शामिल कर देती हूँ। प्रोग्राम को उसमें शामिल नहीं भाई, उसको प्रोग्राम में शामिल करने क्या हो गया। लंच बॉक्स को ओपन करते साथ ना जो भूखा झटका लगता है ना, और फिर दिमाग जो है वो घूम जाता है और ज़ुबान जो है वो अपने काबू में नहीं रहती। खैर वल चलते हैं कलाम की जानिब में, भी शायद इसके उस पार मेरे और आपके दरमियान कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाए। कमर्शियल ब्रेक के उस पार रहेगी फिर आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 एफएम एंड डैप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सरुराज की। सवाल उसी के साथ साथ अभी प्रोग्राम में छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हाल हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक के उस पर ही आपसे मुलाकात। अभी दरअसल ना मैंने दरअसल मेरा ख़ुद बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मेरा आज दिल भी कर रहा है कि प्रोग्राम में जो है आज मैं रेसिपी शामिल करवा दूँ। और आप घर बैठे अब 3 जुमले सुन रही हैं, आप फ़ौरन से कॉपी पेंसिल ले लें और नोटबुक ले लें, तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आसान सी एक रेसिपी बताने वाली हूँ चिकन बिरयानी की। इंग्रेडिएंट्स पहले आपने लेने हैं, चिकन आपने लेना है 1 kg, बासमती राइस लीजिएगा अगर आप वो यूज़ करते हैं तो, वरना आप दूसरे भी कोई कर सकते हैं। प्याज आपने ले लेने हैं 2 medium, और साथ ही में टमाटर आपने ले लेने हैं 2 medium, और दही आपने ले लेनी है तकरीबन 2 चम्मच। आलू आपने 2 ले लेने हैं, और साथ ही में फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है, और हरी मिर्च लेनी है 3 से 4 अदद, बिरयानी मसाला ले लीजिएगा 2 से 3 चम्मच, लाल मिर्च ले लीजिएगा तकरीबन 1 से 2 चम्मच या 1.5 चम्मच कर लें, जितनी आपको बेहतर लगती है, जितना आप स्पाइसी खाना खाते हैं। हल्दी आपने ले लेनी है 1 चम्मच, और साथ ही में नमक हंस बेजायका आपने लेना है जितना आपको बेहतर लगता है, क्योंकि वुमेन इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जो है वो जानती हैं कि किस तरह का मसाला रखना है। साथ ही में पुदीना हरा धनिया ले लेना है आपने 2 चम्मच, और उसके बाद लीमू ले लेना है 1 चम्मच, और साथ ही में आपने ऑयल ले लेना है, ऑयल आप जितना यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात बताऊं कि जब आप कोई रेसिपी बनाने लगते हैं, कोई खाना बनाने लगते हैं ना, तो उनमें ऑयल जो है ना वो ज़्यादा ही डाला करें, तभी जो है वो खाना या चीज़ जो है जो भी आप बना रहे हैं वो अच्छी और मज़े की बनती है। साथ ही में ज़रदा फूड कलर ले लें थोड़ा सा, और उसके बाद आपने करना यह है कि राइस को जो है वो धोकर 30 मिनट के लिए पहले आपने भिगो के रख देना है। ऑयल गर्म कर फिर उसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है आपने, फिर थोड़ी प्याज निकाल कर आपने गर्निश के लिए रख लेनी है, और इसी ऑयल में जो है फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देना है, और साथ ही में चिकन डालकर 5 से 7 मिनट के लिए इसको भून लेना है। टमाटर धनिया बिरयानी मसाला लाल मिर्च हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह से भूनिएगा, और आलू अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली जो है वो कुछ लोग जो है वो आलू को शौक से खाते हैं, तो आलू में बिरयानी में आलू भी पड़ जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, तो अगर आप आलू यूज़ करें तो आलू को भी अभी से ही डाल दें। थोड़ा पानी डालकर चिकन को जो है वो गलने तक आप पकाएं, फिर मसाला जो है वो उसको ठीक से पकाएं ताकि वो कच्चा ना रह जाए। अलग पतीले में जो है वो नमक और साबित गरम मसाले के साथ राइस को 70 से 80% तक बॉईल करें, फिर पानी जो है उसका निकाल लें। जब आप देखेंगे वो अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, चिकन मसाले के ऊपर राइस की लहर लगाएं, और ऊपर जो है वो फ्राइड प्याज जो है वो उसके ऊपर रखें, हरा धनिया हरी मिर्च और नींबू डाल दें उस पर, थोड़ा फूड कलर और साथ ही में फूड कलर डालकर उसको पतीले को जो है वो ढक दें, और उसके बाद तकरीबन आप 15 से 20 मिनट बाद उसको ओपन करें। फिर जैसे ही उसको ओपन करें तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद बिरयानी का असली मज़ा तब आता है जब आप राइस के साथ साथ वो कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वो रखें, तो मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी, तो खुद भी खाएगा और एक प्लेट मेरे लिए भी भिजवा दीजिएगा, मुझे खुद बहुत भूख लगी हुई है। पता नहीं आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिरयानी को जाना प्रोग्राम में रेसिपी को शामिल करूं, ये मैंने आपको अपनी पर्सनली रेसिपी बताई है, घर बैठी है बतीजों में सुनी है, आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छा किया। अगर आपने कोई चीज़ मिस हो गई, कोई चीज़ मिस कर दी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगेन वो नोट करवा दूँगी। लेकिन अभी जो है वो ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम में एक कलाम की फरमाइश मेरे पास मौजूद है तो हम उस कलाम को प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं।
1: सारी
0: फिर इसके उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड डैप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ साथ एक छोटा सा कलाम शामिल किया था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन अब इसी के साथ साथ एक और छोटी सी आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करने का समय आ गया, क्योंकि बस फरमाइशें जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। सुनिए इस खूबसूरती आवाज़ को, इसके बारे ही आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को। रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च। आवाज़ आप सुन रहे हैं सरराज की। सब उसी के साथ साथ अभी एक छोटी सी मशहूर प्रोग्राम में हाल हो चुकी थी, उसके इस बारे ही आपसे मुलाकात। और साथ ही में मैं क्या ही बात करूं, फरमाइशें जो हैं वो मेरे पास आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर मुझे मौका ही नहीं मिलता कि भाई मैं कोई बात भी प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। आज का कोई ख़ास टॉपिक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आज का जो खूबसूरत टॉपिक है ना, उसके हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। बट अभी जो है जो फरमाइश है उसको पूरा कर देते हैं, ये ना हो कि आप निराश हो जाएं।
1: ये काबा जिसे
0: वर ट्यून करके रखिएगा 97.1 एफएम को एंड ऐप को। मिलते हैं इस खूबसूरत से कलाम के उस पार।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर सबको शामिल करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और उसी के साथ साथ खूबसूरत सा कलाम शामिल किया था आपके अपने दरमियान। अभी वक्त हो जाता है दुआओं को मांगने का, इट्स मीन के ये कहने का कि वो दर जहाँ से मांगते हुए शर्म नहीं आती, एक वो दर जहाँ से बार बार मांगने पे बार बार जाने पे रुस्वा नहीं किया जाता, जहाँ से जितनी दफ़ा भी मांगो उतनी दफ़ा से बल्कि उससे भी ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा नवाजा जाता है। सवाल भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, शामिल करते हैं इस खूबसूरत से कलाम को और इसके इस बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात।
1: दिल थाम के वो आता है।
0: लिरिक्स पे गौर कीजिए, गाना के म्यूजिक पे ट्यून करके रखिएगा रेडियो फलजा को। मिलते हैं इस खूबसूरत से कलाम के उस पार।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM और मैं हूं आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा हैदर। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, आज का दिन हमें अपनी ज़िंदगी के उस अजीम तरीन किरदार की तरफ मुतवज्जह करता है जिसकी तालीमात ने इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया। आज 12 रबीउल अव्वल है, वो मुबारक नस्बत जिसके तस्करों से दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागती है, ज़ुबान पर दुरूद आता है और इंसान अपने आप से एक सवाल करता है, क्या मेरी ज़िंदगी में भी मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई रंग मौजूद है। हम आज सिर्फ सीरत सुनाने के लिए नहीं बैठे, हम आज ये सोचेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत कैसे सिखाई, मामलात कैसे सिखाए, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक कैसे सिखाया, पड़ोसियों का हक क्या बताया, कारोबार में दयानत क्यों ज़रूरी करार दी, नौजवानों को मकसद ज़िंदगी कैसे दिया और सबसे बढ़कर क्या हम उन तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। तो आइए आज का एक खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं, यह है रोशनी का सफ़र सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी ज़िंदगी। समीन मोहतरम, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, मोहब्बत यह भी है कि जब हमें गुस्सा आए तो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को याद करें, जब किसी से इख्तलाफ हो तो इंसाफ को याद करें, जब कोई कमज़ोर हमारे सामने हो तो रहम को याद करें और जब हमारे पास किसी के साथ ज्यादती करने का मौका हो तो अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें रोक दें। यही तो सीरत है। सीरत सिर्फ किताब के सफ़ात में नहीं, सीरत हमारे लहजे में होनी चाहिए, हमारे कारोबार में होनी चाहिए, हमारे घरों में होनी चाहिए, हमारी दोस्ती में होनी चाहिए और हमारे सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी होनी चाहिए। आज हम हज़ारों लोगों को अपनी पोस्ट से मुतासर कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है हम उन्हें क्या दे रहे हैं, नफ़रत झूठ मजाक उड़ाना या मोहब्बत अखलाक और खैर। हम अक्सर कहते हैं काश हमारा मुआशरा ठीक हो जाए, लेकिन मुआशरा कहाँ से बनता है, घर से। एक बाखलाक बाप, एक मोहब्बत करने वाली माँ, एक ज़िम्मेदार बेटा, एक ख्याल रखने वाली बेटी, एक अच्छा भाई, एक वफ़ादार दोस्त, ये सब मिलकर मुआशरा बनाते हैं। हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने घर के अंदर भी देखना चाहिए, क्या हमारे वालिदैन हमसे खुश हैं, क्या हमारी ज़बान घर वालों के लिए नरम है, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ डांटते हैं या उन्हें वक्त भी देते हैं, क्या हम अपने शरीक हयात के साथ इज्जत से पेश आते हैं। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाती बल्कि घर के अंदर अच्छा इंसान बनने का रास्ता भी दिखाती है। तो आज 12 रबीउल अव्वल के दिन एक छोटा सा आहद कीजिए कि मैं अपने घर से सीरत का आगाज़ करूँगा। वक्त है खूबसूरत इस्लामिक कलाम का, आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM।

समीर मोहतरम आज का नौजवान बहुत कुछ देख रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसके सामने टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। दुनिया चंद सेकंड में उसकी सोच बदल सकती है। ऐसे वक्त में हमें नौजवानों से सिर्फ ये नहीं कहना कि ये मत करो वो मत करो, बल्कि हमें एक उन्हें बेहतर रास्ता देना होगा, उन्हें मकसद देना होगा, उन्हें किरदार देना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि कामयाबी सिर्फ पैसे, गाड़ी, शोहरत और फॉलोअर्स का नाम नहीं। असल कामयाबी यह है कि इंसान दुनिया में इज्जत के साथ रहे और आखिरत में अल्लाह के सामने सुरखरू हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की कदर उसके किरदार से सिखाई है। तो नौजवान दोस्त अपने आप से एक सवाल करें, अगर मेरे मोबाइल की पूरी दुनिया मेरे किरदार को देख ले तो क्या मैं अपने किरदार पर फख्र कर सकूंगा? ये सवाल आज अपने दिल से

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

लिखू ना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

वेलकम बैक एक मरतबा फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं रेडियो फजाद 97.1 एफएम और मैं हूं आपका मेज़बान। मेरे अजीज सामीन, हमने पहले घंटे में बात की थी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहब्बत की, अखलाक की, नौजवानों की, और इस बात की कि सीरत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी में उतारने का नाम है। और अब हम दाखिल हो रहे हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। इस घंटे के उनवान सीखे मोहब्बत से अमल तक, क्योंकि मोहब्बत अगर दिल में हो तो इसका असर किरदार में नज़र आना चाहिए। आज मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद किया जा रहा है और मौजूद कौमी पैगामात में भी रहम, आदल, बर्दाश्त, इत्तेहाद और खिदमत इंसानियत को सीरत के बुनियादी अमली पहलुओं के तौर पर उजागर किया गया है। तो आइए आज के इस खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।

आज मैं आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ एक सवाल, और ये सवाल आपने मुझे जवाब नहीं देना, ये जवाब आपने अपने दिल को देना है। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे आमाल देखें तो क्या मैं अपने किरदार पर फख्र कर सकूंगा? हम नमाज नहीं पढ़ते, दुरूद पढ़ते हैं, इस्लामी कलाम सुनते हैं, सीरत की बातें करते हैं, लेकिन असल इम्तिहान कहाँ है? असल इम्तिहान वहाँ है जहाँ कोई हमें देख नहीं रहा, जब दुकान पर गलत पैसे ज़्यादा वापस मिल जाएं, जब किसी को हमारी बात का पता ना चले, जब हम किसी को बदनाम करने का मौका मिले, जब गुस्से में हमारे पास सख्त अल्फाज मौजूद हों, वहाँ हमारा किरदार फैसला करता है कि हमने सीरत से क्या सीखा। अब इस खूबसूरत गुफ्तगु के दरमियान एक मुख्तसर इस्लामी कलाम, आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM, क्योंकि फ़ज़ा आपका अपना रेडियो है। ये कलाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के कलामों में से एक कलाम है, बहुत ही खूबसूरत कलाम, कमली वाले मोहम्मद तू सदक़े में जा। सुनिएगा और सर तुरिएगा।

वेलकम बैक। कभी आपने सोचा कि एक इंसान के पास दूसरों को देने के लिए पैसे ना हो लेकिन अल्फाज तो हैं। एक अच्छा जुमला भी सदका बन सकता है। किसी परेशान शख्स से कहना कि फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। किसी शिकस्त खुर्दा इंसान से कहना कि आप दोबारा कोशिश करें, आप कर सकते हैं। अपने वालिदैन से ये कहना कि अम्मी अबू आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। अपनी औलाद से कहना कि बेटा मुझे तुम पर एतमाद है। यह अल्फाज शायद चंद सेकंड के हों लेकिन कभी कभी इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असर डाल देते हैं। इसीलिए आज एक काम करें और किसी एक इंसान से एक ऐसा अच्छा जुमला कहें जो उसे काफ़ी अरसे तक याद रहे।

हम बाहर दुनिया के सामने बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल किरदार घर में सामने आता है। बाहर से सबसे मुस्कुरा कर मिलना आसान है, असल खूबसूरती है कि इंसान अपने घर वालों के लिए भी नर्म हो, अपनी वालिदा की आवाज़ पर झंझलाए नहीं, अपने वालिद की बात को बोझ न समझे, अपने भाई की गलती पर फौरन लड़ाई न करे, अपनी बहन के साथ इज्जत के साथ पेश आए, अपनी बीवी या शौहर के साथ सख्ती के बजाय मोहब्बत से पेश आए, अपने बच्चों को सिर्फ हुक्म न दे उनके साथ बैठे भी। मेरे अजीज सामीन, अगर सीरत घर के अंदर नहीं पहुंची तो बाहर की खूबसूरती खूबसूरत बातें अधूरी हैं। अब बात करते हैं हमारे नौजवान की। हमारा नौजवान बुरा नहीं है, हमारा नौजवान सिर्फ रहनुमाई चाहता है। उसके सामने बहुत से रास्ते हैं, कुछ अच्छे कुछ ख़तरनाक। सोशल मीडिया पर हर रोज़ हज़ारों चीज़ें उसके जहन में दाखिल हो रही हैं, इसलिए हमें नौजवान को सिर्फ ये नहीं कहना कि मोबाइल छोड़ दें, बल्कि ये कहना है कि मोबाइल को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करो, इल्म हासिल करो, अपना हुनर सीखो, हलाल रोज़गार के रास्ते तलाश करो, अपने वालिदैन का सहारा बनो, अपने मुल्क के लिए फ़ायदा बनो और अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें देख कर कहें कि नौजवान वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर हैं।

एक बहुत ही अहम बात, आज हम सब मीडिया का हिस्सा हैं, हम पोस्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, किसी के बारे में राय देते हैं, तो ज़रा सोचिए क्या मेरी उंगलियां भी मेरे किरदार का हिस्सा हैं? जो मैं टाइप करता हूं वो भी मेरे आमाल का हिस्सा है? किसी की इज्जत ख़राब करने वाली पोस्ट, किसी की तजहीक, झूठी खबर बग़ैर तहकीक के फॉरवर्ड करना, किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ मवाद शेयर करना, ये सब हमें सोचना चाहिए? सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मस्जिद, मदरसे और महफिल तक महदूद रखने के बजाय अपने मोबाइल की स्क्रीन तक भी लेकर आएं? अगर एक पोस्ट किसी को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर करें, अगर किसी बात से फसाद पैदा होता है तो रुक जाएं। हर पोस्ट से पहले एक सवाल, क्या ये खैर है? अपने आप से ये सवाल ज़रूर कीजिए।

वेलकम बैक सामीन मोहतरम। वक्फे से पहले हमने आपसे सवाल किया था कि आप खुद से सवाल कीजिए कि वो कौन सा अच्छा काम है जिसे आप जानते हैं कि मुझे शुरू करना चाहिए, और वो कौन सा इंसान है जिससे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज 12 रबीउल अव्वल है, हो सकता है कि एक दिन आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। बस एक फैसला कर लीजिए, एक बुराई छोड़ूंगा, एक नेकी शुरू करूँगा, एक इंसान के लिए आसानी पैदा करूँगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
9: You are listening 97.1 FM.

0: कुड़िया ब्राउन कटिया काली।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।
10: टर्न इट अप रेडियो फाजा 97.1 FM।
11: यू आर लिस्टिंग
12: We are playing
13: Fazan 97.1.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
4: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

Better. The radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2 ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: Bigger, bigger and better, better. The radio station for people who love music.
6: Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be waiting.
7: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

0: America. Radio Faza 97.1 FM.
1: Zara nazron se keh do ji.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन, तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन, तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन, जरा नाप जरा कोल, इसे लूट उसे

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: आपके दिल की धड़कन, रेडियो फजा 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.